0: बेशक हम गवाही देते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह, हमारी गुफ्तगू में सदाकत, सच्चाई, मुखलिसी अता फरमा। लोगों को मायूसी, बेजारी, ना उम्मीदी से निकाल और उन्हें नई उम्मीदें दे, नया जोश जगाने की तौफीक अता फरमा। हमसे कोई नाराज़ ना हो, किसी का सुकून जाए, लोग खुश रहें, मुतमईन रहें और हम लोगों की दुआओं के मुस्तहिक बने। ऐसी सदकात की ज़िंदगी अता फरमा। सबके आंगनों में मोहब्बत के फूल खिला, खुशबू फैला और घराने हरे भरे रहे। ये दुआ मैं ख़ास कर रही हूँ क्योंकि आजकल रिश्ते टूट रहे हैं इस फितना फसाद के ज़माने में, जहाँ सच्चाई को रौंदा जा रहा है और झूठ का सहारा लिया जा रहा है और इससे रिश्ते टूट रहे हैं। अल्लाह हमें फ़क्र व रश्क वाली ज़िंदगी अता फरमा। दुनिया की नियामतों और आखिरत की रहमतों के साथ इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी और खात्मा ईमान के साथ नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन, पूरी उम्मत मुसलमान को इत्तेफाक अता फरमा। फ़िलिस्तीन लोगों की गैब से मदद व नुसरत फरमा। आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा। बहुत लोग बीमार हैं या रब्बुल आलमीन, मेरे ख़ास दोस्तों को जो बीमार है, या अल्लाह तमाम बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा और तमाम मरहूमिन की मगफिरत फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। इसी की दुआ के साथ अगला कलाम है, तो मिल जाए मौला।
1: मेरा दिल एक ऐसी प्यास में है जो इस दुनिया से बुझ ही नहीं सकती।

अजीब सी कश्मकश है मौला, सांस यहां चल रही है और धड़कन तेरे अर्श पे है।

बेशक अहले बैत जो है उनके सारे बच्चों को प्यास से मारा गया, तो ये वही कहानी है। और अगला कलाम भी कबूतरनामा शहादत रईस मियां साहब की आवाज़ में।

जी बेशक, बहुत ही खूबसूरत हमारी माँ के लिए, और ऐसी ही माँ है हमारी प्यारी बुआ हवा अम्टे, जिनकी आज 91st बर्थडे थी, तो इनके लिए दुआ है। जो माँ है हमारी प्यारी शेख फैजल की भी, गम नूर फिर फिरे और चांद बीबी, जो अब दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे और इनका साया रखे अपने बच्चों पर, अपने ना पोतों पर, नवासियों पर, और इनको खैर और बरकत और आफियत सुकून लंबी ज़िंदगी और हमेशा हमेशा खुश रखे। और एक ख़ास मैसेज है, एनिवर्सरी मैसेज हमारे शेख हाफिज़ महमूद ख़तीब साहब, जिनकी कल शादी की सालगिरह थी, हाफिज़ महमूद ख़तीब साहब और उनकी खूबसूरत बेगम, इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ब्लेस देम विद मोर लव केयर एंड मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस। ख़तीब साहब, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर ऑलवेज स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ यूनिटी एंड लव इन द कम्युनिटी। अगला कलाम, फिर से वो पैगाम मैं देना चाहूँगी कि रिश्तों को ना तोड़े, मिलजुल के रहे, आओ ऐसे मोहब्बत करें, भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

जी हाँ, अमीना अप्पा ने मैसेज भेजा है, माय सेंड मैसेज फॉर ऑल द मरहूम्स, माय पेरेंट्स हुसैन हाफिजा संगे, आयशा पाक, जुबैर पाक एंड एवरीवन, मे अल्लाह गिव देम द हाईएस्ट प्लेस इन जन्नत एंड ऑल द सिक पीपल, द उम्मत ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑल ऑर्फन्स विडोज डिवोर्सीज एंड अल्लाह मस्ट प्रोटेक्ट अस. जज़ाकअल्लाह खैर अमीना अप्पा, वक्त मुश्किल है लेकिन अल्लाह से दुआ करते रहें, आमीन.